0: पुरस्कार आधुनिक कला समावेशी रेडियो पुरस्कार आवाज यो रेडियो पुरस्कार
1: हमारे स्टूडियो खड़े में डीएमएच का पत्रकार

0: பார்த்தீங்களா,
1: एक पटक सेवा करने मौका अवश्य दिन वाला हस्ताक्षर

सर्वदंश अनुसंधान केन्द्र संघ को सहकार्य में रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमांडू मित्र का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागि प्रस्तुत संदेश।

और परमेश्वर प्रिय अपने पूजा संपन्न भाई संजय काम राजकांत मैडम जो बाबा से भाषा बंद होने गई पची बर्खा खेती कई सके पची हजार कोई पची काम राजकांत बाजा खुलने बताने पाएको छ बाजको नगरपालिका वहाँ

आपने की कारण कार्यक्रम दिखाई दे सराय कुशा चैत्य खान पर को कर्णाली नदी ने खेले को राजापुर के वर्गाम पालिका में उत्पादन होने करे आज हमें कपड़े को पुरस्कार

sangat kurang dalam kurang halalnya semit awasik dan saya berpandangan terhadap mati dan air ikut jalan ikut saya air sudah akan berpisah kepada semua manusia harusnya mengakai sejarah ikhterma jamin masih saya sudah tidak pria ikut saya seluruh terpahal ikan mati masuk dan masih jahit sima buku ikut kita lihat terpahal ikan kebarib air sejarah ikhter cipta saya bahagia itu hal itu kamu tahu 2043 saat dikit suruh kuai ku pokok sejarah air sudah akan berarti pasal 2086 sama sampai dengan dalam sejarah ikut saya 26 Oktober pilihan alat perumahan kariku air sudah harus memakara aku rupiah kalau bisa kita sah, ayam sehat politik berarti kita si politis atau politik berarti politik politis atau apa nanti sabar mulai ayam mulai sampai besok pun akan meratri kalian kalau semit sensoran kalau punya apa sekitar rumah dalam dalam lagi perusahaan terhadap suratnya lebih besar daripada punya pada orang itu satu itu dengan serta orang itu isan dan semua negara itu itu bukan tanpa kita punya राष्ट्रीय समाचार प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाहले महिला अधिकार लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले प्रान्तिकमा बोक्सीपर्का छ बढी दाइजो तथा तिलक लगायत कुपर भात तथा लैङ्गिक घरेलु र डिजिटल हिंसाको अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्था सबै सामाजिक चेतना अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। महिला अधिकारको संरक्षण र गणतन्त्रका लागि राज्य समुदाय तथा सरकारमा सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि पारेका महिलाको सशक्तिकरण मार्फत आत्मनिर्भर समृद्ध समाज

दासवरी चार पटवा में परम्परागत यात्री पूजा संपन्न दासवरी तीन महादेवा पूर्व निर्माण स्वरूप गांव स्तरीय अधिकारी काम बताई राजा पूरा के चैत्य धाम में प्रभाव खीरा को प्रकोप किसान चिंतित महिला सशक्तिकरण का संचालन करना

0: ऊपर कटकरा लगा तो कहना तुम्हारे ऐसी कमियाँ पढ़ाई में ध्यान ही दी जाना सुन से
1: खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड को संतुलित खाना रोजी।

0: रेडियो के पास एफएम का सब कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालय और या से जन जितना चाहिए सुन रहे हैं।
1: धन्यवाद।

ठनाखाइ व्यायाम शब्द गरी धुनपान मदिरामा सेतुना रही तलाफना नियन्त्रण गरी आज निर्भय कार्य जीवन निशाना रोगमा से बाँचे स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएम सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यले बढ्दै

bisogna passare un po' solo che stanno andando a fare questo ma solo che ha कैलाइटन जोशी को जाओपाल का अंतर्गत पूर्वा वैधवा तथा स्वर्गीय समाज कार्यचना में जोशीपुर द्वीप पर्यटकी में सांस्कृतिक स्थान सहित परंपरागत शैली में पूजा पूजा भव्य रूप में कैलता पूर्वा सुवर्ण चौधरी का कर्कश्यामा हुईरत थुरिया पूजा कार्यक्रम जोशीपुर गांवपालिका वार्ड नंबर चार को वड़ाध्यक्ष राम चरण चौधरी बड़का पंखा महाठार समाज में कृषि का तीन महत्वपूर्ण बड़का खोजना संरक्षण और निरंतरता देना चल विभाग पटेल सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार समाज का महत्वपूर्ण अंग पूर्वा पैदा स्वर्गीय निरलत पटेल महाकंठ शरण ज्ञान उनका कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि जोशीपुर गांव पालिका द्वीप वड़ाध्यक्ष विष्णु प्रसाद दमौरा गुरुवा वन का पूजा करना ठाव संरक्षण व्यवस्थित नई आवश्यक लगभग पूजा करना ठाव में खाने पानी का लागत धारा गाड़ा पचे नियोजन कैटिका किसान क्लब पैसा बारी लगाइना सीजन पैसा से पैसा प्रत्येक वर्ष अन्न बाली होना चिरा गाँटी प्रकोप से सुरक्षित धारकला पूजा करना गुरुवा छोटेलाल चौधरी जनैर परम्परागत रूप से तिलक हरेली पूजा अमानी पूजा हो थोड़ी पूजा धान का मुख्य पूजा का रूप में रखते महापटेल ये पूजा ने अन्न बाली किरा घाटी नुकसान निकलना वो पाली में मजा दाना रखना परम्परागत मौलिक मान्यता रहत गुरुवा हुकुम करता है कार्यक्रम नाथ प्रस्तुत उमेर में सबसे छठ गुरुआ वर्ष अठारह का अजय चौधरी हो ज्येष्ठ गुरुआ भागमल चौधरी सम्मान पत्र सम्मान कैलाली से प्रेम चौधरी खबर पठाई राष्ट्रीय समाचार तो प्रतिनिधि सभा में पूरा उपयोग क्षेत्र संबंधी सीमा विवाद में सकारात्मक ध्यान आकर्षण करा सरकार का ध्यान आकर्षण करा के व्यापारी मारे का सांसद पद्मा हरियाल भारत को चीन बीच हुई तिरलत व्यापारिक मार्ग निर्माण में नेपाल का सरकार बारे प्रश्न उठाए पास प्रधानमंत्री नरेन्द्र शाह सरकार कूटनीतिक पहल में रहत जानकारी करे प्रधानमंत्री शाह के अनुसार नेपाल भारत में औपचारिक कूटनीतिक नोट पठा शेखर बहादुर से भारत इतिहास पीटो नागरिक समय से वर्तमान से समाधान वार्ता में से समाधान खोजना प्रस्ताव करेगा ये विषय में बेलायत सरकार से फिर छलफल हुई लेकर थी प्रधानमंत्री शाह सीमा समस्या कूटनीतिक संवाद में से समाधान होना विश्वास व्यक्त करता राष्ट्रीय समाचार सुनना हमारे संदेश का समय बुराई लगा हमारा संदेश होना से पहला मुख्य मुख्य संदेश बर्दिया को बांसुरी स्थित बांसुरी बहुमुखी कैंपस संचालक समिति का निर्वाचन और मतदान शांतिपूर्ण रूप में निर्जल मतगणना जारी रहा वो प्रतिनिधि सभा मालिकुन इंडिया थोड़ा वाली पुलिस क्षेत्र संबंधी सीमा के बाद बारे सकारात्मक ध्यान आगे सरकार का सदन सरकार का ध्यान आकर्षण करा गिर अब हमारे संदेश काल बिना 7 बजे नेपाली भाषा हमारे संदेश लिखाने बाकी तब समुदाय समाचार लक्ष्य कार्तिक सुंदरिया गौरी शंकर चंद्र रामस उमय कुमार विधायक रेडियो प्रभाव एफ एम सिंह जय दिवाला।

0: सब्जी फल फूल चाहे कम पोषण का खाना है, बच्चा खाना तंदुरुस्त बनाए, पूरा खाना सुन सकर दुई बरस समाप्त स्तर पर जाए चाहिए।
1: रेडियो कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहित में जारी समय।
2: नमस्कार, मेरा नाम योगनाथ चौधरी, वास्तवी नगरपालिका वडा नंबर 4 गोरखा बोधिया। मैं जड़ीबुटी उद्योग स्थापना थुप्रै किसिम का औषधि उत्पादन करने गर्छु। हाम्रो प्रकृति जड़ीबुटी उद्योग लगायत सब फलहरूको औषधि उपचार

0: प्रस्तुत आदि वर्ष 2081-82 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रस्तुत रिधान संशोधन
1: राष्ट्रीय खाद्य पानी उपभोक्ता विकास समिति वास्तविक 5 वर्ष

विश्व भर का रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित के लिए प्रस्तुत संदेश

विश्वास नगर और सही जानकारी 5 लाख को नगर कुटकार केन्द्र का बताया गया था। पता लगा लाख अधिकारी www.nepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी ले सकते थे। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमोलोजी तथा रोग नियंत्रण शाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बिपी कुण्डला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र सम्बको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथै विश्व प्रकार रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।